लाड़ो लाड़ी जमेरे कंसार संसार के वो मीठो लागे रे। ए चार वक्त चार कोड़िया आपे छे, त्यां पुरुष वचन आपे छे के आज थी तारा योगक्षेमनी जवाबदारी मारी। अने पहले कोड़िए आत्मा साथे आत्मानो संबंध, बीजे कोड़िए मज्जा साथे मज्जानो संबंध, त्रीजे कोड़िए अस्थि साथे अस्थिनो संबंध, अने चौथे छेल्ले कोड़िए त्वचा साथे त्वचानो संबंध। आ जे भाव छे ए कंसार खवाड़ोमां ए पाछळनो आ एक भाव छे। ए हुं तमने अने पुरुष कहे छे के आज थी तारा योगक्षेमनी जवाबदारी मारी। जीवन साथी आज थी, અને આગલું જે ગીત છે એ પણ ફિલ્મ જીવન સાથીમાંથી લેવાયું છે, જે ગાયું છે સોનુ નિગમે।